0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय

0: सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threat for us.
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और

0: वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक LPG टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी

0: पताका के साथ फर्टिलाइजर कर्व के साथ वो आ रहे हैं और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की

0: खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने सीयूईटी परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में सीयूईटी के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली एनसीआर में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। ब्रिक्स नेशंस कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन टू एड्रेस वाइडनिंग रेंज ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट्स। Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats.

0: बुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ?

0: ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्का समझा करो डालिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ऐकूप्यानो, तुम्ही ऐकता चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ। आमची ही कार्यावळ पुढे वर्तना ऐकूया गर्लफ्रेंड ह्या फिल्मातले गीत, सौम्या राव आणि शान हांचा आवाज, डब्बू मलिक हांचे संगीत।

में शोर दिल बेनजोर, तूफान सा है एक दोनों ओर, मुझे खींच रही अनजानी डोर, बस तेरी ओर।

0: श्रोते हो, पंकज पाडघन यांच्या स्वरात हे गीत तुम्ही ऐकलं आणि या गीताबरोबरच आजचा मराठी गीतांचा हा कार्यक्रम इथे संपन्न होत आहे. आकाशवाणी पणजी केंद्राचं होम हा दे चॅनल ऐकुप्यानो बरोबर धावराचेर हिंदीतल्यान खबरो आम्ही दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपित करता.
1: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया. बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की. बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया. विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं. प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की. बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई. बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है. भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है. जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है. खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं. उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं.
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं. इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है. इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं. और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे.
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा. संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है. इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है. भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए

0: उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेतरी तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती सुशासन और सेवा के लिए शाश्वत प्रेरणा बनी रहेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Don't 1 meter 1287 kilohertz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादई चॅनलावेल्यान आम्ही उलयता। 10:05 आणि 7 सेकंद जाल्ले आसात। आयकुप्यानो आता आयकुया कातारांची कार्यावळ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान

में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कामापुरता मामा या फिल्मातलें गीत तुमी आयकलें, लता मंगेशकर हांचो आवाज, संगीतकार आनी गीतकार यशवंत देव. आयकुप्यानो फिल्मी संगीताचो आस्वाद तुमी घेता, आयकत गाता रहे मेरा दिल. आयकुया फुडलें गीत.

0: एक वराचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो आनी एक वर जावन 5 मिनटांचेर मुखेल खबरो.
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है. पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की. पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है. ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है. दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए. देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं. इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है. 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है. यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है. उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया. आज पासपोर्ट सेवा दिवस है. यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है. भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है. आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही. इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है. प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है. निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था. आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी.
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है. और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी. अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं.
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई. ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर

0: पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमरीका की बातचीत में खाड़ी देशों

0: की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया।

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोनशे 33.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता। 2:30:12 जाल्यात। चित्र संगीत कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। ऐकूप्यानो पावसाचे हे सोबीत दिवस.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया। मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है। ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिक

के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए सिरे से बातचीत के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के बारे में जानकारी देंगे। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले में जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुरुदुगुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाकर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनगिरी सिरी जिले के में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के यजाली क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 72.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन के दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगेल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की भूमिका निभाएंगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी पणजी केंद्र का ये मादर चैनल है। आज के हिंदी कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं गोवा के मंदिर और गिरिजाघर, इस विषय पर संदीप लोटलीकर की ये वार्ता।
1: गोवा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा प्रदेश है। यहाँ पर अनेक सुंदर मंदिर और गिरिजाघर पाए जाते हैं। यहाँ के लोग धार्मिक विश्वासों को मानने वाले हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा में मंदिर को देवस्थान कहा जाता है। ये मंदिर कभी गोवा के गांवों, नगरों और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समारोहों के केंद्र हुआ करते थे। इन्हें कोंकणी में ग्राम संस्थान के रूप में भी माना जाता है। गोवा में मंदिर हमेशा गांव के केंद्र बिंदु रहे हैं और लोगों का जीवन इन मंदिरों और त्योहारों से संबंधित था। गांव की संपत्ति को कुछ नियमों के अनुसार ग्रामीणों में विभाजित किया गया था। मंदिरों के संरक्षक महाजन के रूप में जाने जाते हैं। यह महाजनी व्यवस्था मंदिर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी। गोवा में लगभग सभी मूल मंदिरों को पुर्तगालियों ने ध्वस्त कर दिया और यहाँ के निवासी देव मूर्तियों को लेकर अन्य स्थानों पर चले गए। गोवा के मूल मंदिर चट्टानों के पत्थरों, लकड़ी और चूना पत्थर से बने हैं। गोवा का केवल एक प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद है, जो तांबड़ी सुल्ला महादेव का है। आम तौर पर यहाँ के मंदिरों के मुख्य द्वार पर एक पानी का छोटा सा पोखरा दिखाई पड़ता है, जिसे तली कहा जाता है। मंदिरों में पाए जाने वाले खूबसूरत दीप स्तंभ यहाँ की एक अलग विशेषता है। तांबड़ी सुरला का महादेव मंदिर। गोवा में पुर्तगाली आक्रमण से पहले सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे। यह एक हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। पुर्तगाली शासन में ज्यादातर मंदिरों पर पुर्तगालियों का कहर बरपा। इनमें से ज्यादातर मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। फिर भी गोवा के कुछ मंदिर अब भी मूल रूप में सुरक्षित हैं। गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर तांबड़ी सुल्ला के घने वन क्षेत्र में महादेव शिव का मंदिर है। अगर गोवा राज्य के सबसे पुराने मंदिर की बात करें तो यह 13वीं सदी का मंदिर है। यह मंदिर कदम्बा और देवगिरी के शासनकाल की वास्तुकला का सुंदर नमूना है। तांबड़ी सुरला का शिव मंदिर अपने कलात्मक शिल्प एवं वैभव के कारण जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में कदम्ब राजाओं के समय इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में जैन शैली की छाप दिखाई देती है। मंदिर का निर्माण ऐसी जगह पर हुआ है जहां पहुंचना आसान नहीं था। यह मंदिर गोवा के बाकी मंदिरों की तुलना में आकार में भी छोटा है। इसके निर्माण में बेहतरीन किस्म की बेसाल्ट चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में छोटा सा मंडप बना है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं। मंदिर परिसर में शिव की सवारी नंदी की भी प्रतिमा बनाई गई है। मंदिर के पास ही सुरला नदी बहती है। साल के बाकी दिनों में मंदिर को देखने कम श्रद्धालु पहुंचते हैं, पर महाशिवरात्रि के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लग जाता है। मंगेशी मंदिर। मंगेशी मंदिर गोवा का एक प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर को श्री मंगेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये गोवा की राजधानी पणजी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पोंडा क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच बना यह मंदिर 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ भगवान शिव शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव बाघ के रूप में देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए थे, जिसे देखकर माता घबरा गईं।

और उनके मुंह से रक्षाम गिरीश शब्द निकला। तब से भगवान शिव यहाँ मंगिरीश के नाम से पूजे जाने लगे। गोवा वासियों में इस मंदिर को लेकर काफी आस्था है। करीब 450 साल पुराना यह मंदिर देखने में काफी सुंदर है। यहाँ सभी स्तंभ पत्थर के बने हैं और इस मंदिर में एक भव्य 7 मंजिला दीप स्तंभ भी है। माघ महीने में यहाँ जत्रोत्सव का आयोजन होता है। इस मंदिर में हर सोमवार एक महाआरती भी की जाती है। सोमवार को ही यहाँ पालकी पर भगवान की प्रतिमा की यात्रा भी निकाली जाती है। शांता दुर्गा कुकलीकरण मंदिर। शांता दुर्गा कुकलीकरण मंदिर का एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। शांता दुर्गा कुकलीकरण का यह सुंदर मंदिर मूल रूप से कुकली में बनाया गया था। 1570 के दशक में पुर्तगाली शासन के दौरान कुकली के मूल मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन शांता दुर्गा की मूर्ति को फातरपा ले जाया गया, जो उस समय पुर्तगाली क्षेत्र से बाहर रहा था। फातरपा गांव में एक नया मंदिर बनाया गया, जहां वह आज तक बना हुआ है। इस देवस्थान में 12 विभिन्न समुदाय शामिल हैं, जिसे वांगड़ कहा जाता है। यह दिलचस्प है कि मंदिर के किसी भी सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत के लिए इन 12 वांगड़ों की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि शांता दुर्गा देवी के 2 रूप हैं। उसके शांत रूप में वह माता है, जबकि उसके अन्य रूप में वह देवी दुर्गा का उग्र रूप है, जो सभी बुराइयों का नाश करने वाली है। मंदिर के चारों दिशाओं में मूर्ति के 4 रूपों को देखा जा सकता है। श्री महालक्ष्मी मंदिर बांदोड़ा। श्री महालक्ष्मी मंदिर दक्षिण गोवा में फोंडा तालुका के पास ही बसे बांदोड़ा गांव में स्थित है। यह मंदिर अपनी बड़ी बड़ी खिड़कियों और अपने विशाल आकार के कारण किसी राजसी भवन की भांति लगता है। इस मंदिर में स्थापित देवी महालक्ष्मी बल और शक्ति की देवी है। माना जाता है कि वह आदि शक्ति यानी शक्ति और ऊर्जा की अवतार है। कई लोग उन्हें पल्लवी के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके संदर्भ में कहा जाता है कि शक्ति की यह देवी तब प्रकट हुई थी जब देव और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। गोवा में स्थापित श्री महालक्ष्मी की विशिष्ट और अनोखी बात यह है कि उनके माथे पर लिंग बना हुआ है। इसके अलावा उनके हाथों में हसुआ, गदा, कटार और प्रसाद से भरा पात्र है। इस मंदिर का परिसर सुंदर बाग बगीचों से सुशोभित है। यहाँ पर विविध प्रकार के फूलों के पेड़ देखने को मिलते हैं। श्री महालक्ष्मी मंदिर प्राचीन काल से बांदोड़ा गांव में ही स्थित है और यही इस मंदिर का मूल स्थान है। कहा जाता है कि यह मंदिर पुर्तगालियों के अत्याचारों से अछूता ही रहा था, जिसके कारण उसका स्थानांतरण न होकर वह अपनी मूल जगह पर ही स्थित है। महालसा नारायणी मंदिर। महालसा नारायणी मंदिर गोवा राज्य के मारदोल नामक गांव में स्थित देवी महालसा को समर्पित मंदिर है। नीले रंग से सुशोभित इस मंदिर का आकार प्रकार अद्वितीय है और उसके शिखर पर पीतल का चमचमाता हुआ कलश है। इस मंदिर का आंतरिक भाग लकड़ी का बना हुआ है, जिसे बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही चारों ओर बड़े बड़े उत्कीर्णित स्तंभ नजर आते हैं। इस मंदिर के महाकक्ष में भक्तों को बैठने के लिए लकड़ी का तख्ता बनवाया गया है। मंदिर की छत के आंतरिक भाग पर नाजुक नक्काशी काम देखा जा सकता है, जो विविध प्राणियों और पक्षियों को दर्शाता है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर लकड़ी की सुंदर कारीगरी देखी जा सकती है। महालसा को मोहिनी के साथ जाना जाता है, जो भगवान विष्णु का एक अवतार थी। महालसा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का नाम है। मोहिनी यानी अपने रूप से सामने वाले को मोहित करने वाली नारी। उनका यह अवतार समुद्र मंथन की कथा से संबंधित है, जब विष्णु ने असुरों का ध्यान विकेंद्रित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। महालसा मंदिर मूलतः आज के वेरणा गांव में स्थित था, जो उस समय वरणापुर के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में

0: महारडोल में स्थानांतरित किया गया था, यानी यह मंदिर भी लगभग 450 साल पुराना है। महामाया कालिका देवी मंदिर, यह काली देवी को समर्पित है। यह उत्तरी गोवा के डिचोली तालुका में कासारपाल में स्थित है। कालिका देवी मंदिर के प्रमुख देवता काली या रुद्र हैं, जिनकी पूजा महामाया के रूप में की जाती है, जिन्हें देवी दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। कालिका देवी का यह मंदिर एक अनूठी शैली के लिए जाना जाता है। इसमें उत्कृष्ट मूर्तिकला और स्थापत्य का मिश्रण देखा जा सकता है। देवस्थान के शीर्ष पर एक विशाल सोने का कलश भी है। महामाया कालिका मंदिर दो भागों में विभाजित है, जिसमें सात पंक्तियों के चार स्तंभ हैं। आंतरिक मंदिर में देवी काली की छवि है और गर्भगृह में मुख्य मूर्ति कदम्ब मूर्तियों की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। कालिका देवी मंदिर में मनाए जाने वाले त्योहार शिशिरोत्सव, नवरात्रि, वसंत पूजा, दशहरा आदि हैं। सुंदर सुंदर मंदिरों के साथ गोवा राज्य अपने खूबसूरत चर्च के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों का शासन रहा। यहाँ पर बसे चर्च उस शासन की याद दिलाते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉ जीसस, बॉ जीसस का शाब्दिक अर्थ है शिशु यीशु या अच्छा यीशु। द बॉ जीसस बेसिलिका चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। ओल्ड गोवा पुर्तगाली शासन के आरंभिक दिनों में उनकी राजधानी हुआ करता था। यह चर्च गोवा की राजधानी पणजी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सेंट फ्रांसिस के आश्रम के पास स्थित यह स्थान सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर और कब्र के लिए प्रसिद्ध है। सेंट फ्रांसिस जेवियर पुर्तगाली काफिले के साथ भारत आए थे और उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। यह चर्च विश्व के ईसाइयों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ पर इस बात का अनुभव किया जा सकता है कि दिव्य शक्तियों का क्या महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के पास उपचार की अपार शक्ति थी, जो आज भी उनके नश्वर अवशेषों में प्रतिबिंबित होती है। इस बात का साक्ष्य तब मिलता है जब 10 साल में एक बार सेंट जेवियर का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ रखा जाता है। आज भी सेंट फ्रांसिस के अवशेष एक कास्केट में रखे हुए हैं। से कैथेड्रल चर्च, से कैथेड्रल चर्च पुराने गोवा में स्थित है। यह गोवा का सबसे लोकप्रिय और प्राचीन धार्मिक स्थान है। से कैथेड्रल पूरे एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा चर्च है और यह 80 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। पूरे विश्व के ईसाई समुदाय द्वारा उच्च सम्मान और पवित्रता के इस स्थल का दौरा कर पुर्तगाली कला, मूर्तिकला और उनकी राजसी गौरव का आसानी से अनुभव किया जा सकता है। यूनेस्को ने से कैथेड्रल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, से कैथेड्रल के पश्चिम दिशा में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च स्थित है। इसे शुरुआत में प्रार्थना घर के तौर पर बनाया गया था। वर्ष 1521 में इसका पुनर्निर्माण किया गया और पूर्ण रूप से काम करने वाले चर्च का रूप दिया गया। हालांकि 1835 में पुर्तगाली शासन ने इसे बंद कर दिया था। वर्ष 1964 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस चर्च को संग्रहालय बना दिया। इस चर्च में मूर्तियों, पेंटिंग्स और कलाकृतियों का विशाल खजाना है। चर्च में मोज़ेक, कोरिंथियन शैली और टस्कन संस्कृति का मिलाजुला स्वरूप देखने को मिलता है। पहली शैली का प्रयोग चर्च की आंतरिक सज्जा में, जबकि बाद की शैली का प्रयोग चर्च की बाहरी हिस्सों की सज्जा में किया गया है। चर्च के भीतरी दीवारों को बाइबल के महत्वपूर्ण विचारों और सुंदर फूलदार डिजाइनों से सजाया गया है। चर्च के सामने वाले हिस्से में सेंट माइकल की मूर्ति है। इसके अलावा एक चैपल में कुर्सी पर सेंट फ्रांसिस असीसी के लकड़ी की मूर्ति भी सजाकर रखी गई है। अपने उत्कृष्ट स्थापत्य कला से गोवा के मंदिर एवं गिरिजाघर पूरे विश्व में हमारे गोवा राज्य का नाम रोशन करते हैं।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे गोवा

0: के मंदिर और गिरिजाघर इस विषय पर संदीप लोटलीकर की वार्ता। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या आणि 9 वरांचेर न्यूज 8 9 दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपित करतात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is really our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने

0: उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की

0: हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटेन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आईएनएस कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
2: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार है, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार में विशेष है।
2: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
2: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
2: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का यह बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स

0: तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
1: जी जी
0: और वो नित्य नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी
1: जी
0: जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें यह भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को, वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के

0: साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खड़ी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी।
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, वो शॉटपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम तुम्हारे समय है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक।
1: जी जी।
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली सारा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। ऐसे में शॉट पुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ। और ऐसे मेरे पास अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और नाम को, द्रौपदी मुर्मू नाम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
3: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
3: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
3: Right now, I will be completely honest. I don't know about startups and all, but as of today, what I'm trying to focus on is to come up with the most sustainable solutions to all the societal problems. And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now, I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also as I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
3: It was something that I never dreamed of. And even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर। And I don't know how to explain it, to be honest.
1: Thank you so much, आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर।

0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा,
1: बिल्कुल
0: और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया, और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मेरे लिए बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट

0: मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने तो काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, फिर मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी ना एक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिला था सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मैं ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
0: जी
1: है। हम आपसे और जानना
0: जी
1: चाहेंगे
0: जी
1: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
1: जी
2: जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में, मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री प्रबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है,
1: बिल्कुल
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ, मेरा
1: बिल्कुल
2: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को, उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
2: संगीत का
1: जी
2: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज के जो जनरेशन है

0: वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है। तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इस इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय ही कार्यावळ निकटीस तुम्ही ऐकली। दिल्ली केंद्रावेल्यान ही कार्यावळ आम्ही सहक्षेपित केली। आम्ही उलयतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर। नभो नाटकाच्या कार्यावळीन आमच्या समेस्त आयकुप्यांक आम्ही दितात येवकार। गोयचे रंगकर्मी आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राचे नभोनाट्य कलाकार श्री अजित केरकर हे ह्या महिन्यात संसाराक अंतरले। तांकां श्रद्धांजली म्हणून आयज तांची भूमिका आशिल्ले नभोनाट्य आम्ही आयकुपाक दितात। हे ध्वनीमुद्रण आमच्या संग्रहातले आसा।
5: आकाशवाणी पणजी ऐकूया नभोनाट्य सती। बरोपी डॉक्टर जयंती नाईक, सादर करपी साईश देशपांडे।

0: धोंडुताई कुलकर्णी हांचे गायन निखतेस तुमी आयकले. कार्यावळीन सुरवेक तांणी गायिल्लो राग मीरा मल्हार आनी निखतेस तुमी आयकलो तांणी गायिल्लो राग सुहा. आयकुप्यानो, इतल्यान आयची ही हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई. प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया. बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई. श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया. प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की. श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की. उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की. बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की.

0: चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।